एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह, पादशाही दशमी कबेवाच बेंती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काबू हुआ, पहा दय मोहे बचाव हो, सुखी बसा मोरु परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सा बैरन कौवाज संघरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिय हैं, चुन चुन शत्र हमारे मारिय हैं, आप हाद मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू कर हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताही हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसिही को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो मद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिंटी थे कुंचर असथूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाद हईया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों ता गावो।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख सब रूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी पंज प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह